सहित धूपमाचमन्यम प्रतीरताम ओम वनस्पतिर सद्भूते गंधान दिव्यो गंधोत्तमम अर्घ्या सर्वदेवानां धूपोयां प्रतीरताम ओम ह्रीं सिं श्री अग्नि वाहिने जयाय दिव्यै स्वाहा शरीरारोग्य अर्थम च पुत्रपौत्रादिकं तथा प्रदस्यामो न संदेहो वांछित फलम लभे।

0: अरे गुड़िया, ये तुम क्या गा रही हो?
1: भैया, मैं पोयम गा रही हूँ।
0: तो क्या तुम्हें लिटिल कृष्णा का भजन नहीं आता?
1: नहीं भैया, क्या आप मुझे लिटिल कृष्णा का पोयम सिखा देंगे?
0: हाँ, जरूर सिखाऊंगा, पर तुम्हें भी मेरे साथ गाना पड़ेगा।
1: मैं जरूर गाऊंगी।

0: अच्छा गुड़िया, तुम्हें सबसे प्यारा कौन लगता है?
1: माँ तो कहती है कि देखने में चंदा मामा सबसे प्यारे लगते हैं, लेकिन लिटिल कृष्णा कैसा दिखता है?

0: सुनो गुड़िया, ये लिटिल कृष्णा का पोयम अपने सारे दोस्तों को सिखा देना।
1: पर भैया, मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं।

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति.
1: Jai Sri Ram, listeners of Radio Jagriti 102.7 FM. You are about to listen to the program Puja Vidhi with Pandit Rishi Oja Maharaj.
2: अच्छा परम सुब्रत श्रुति गुरु महाराज की जय सीताराम नमस्ते एंड वार्म वेलकम दिस मॉर्निंग टू आवर प्रोग्राम पूजा विधि. माय डियर फ्रेंड्स, एट दिस टाइम आई इनवाइट दोज हु आर होम टू प्लीज लेट अस ऑल सिट अपराइट एज यू ऑल क्लास महान्स एज यू क्लोज आवर आईज एज यू मेडिटेट अपॉन दैट फॉर्म ऑफ आवर गुरुजी. वी प्रेयर वी आस्क द भगवान एज वी बाउ टू द फीट ऑफ आवर गुरु. As you contemplate, as you meditate, as you concentrate, as you fall prostrate at the feet of Bhagwan. For it is stated in the scriptures, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Saksham Param Brahm Tasmi Shri Guruve Namaha. The Guru, my dear friends, He is that physical form in this world, in that form which is called God. So we pray our humble sympathy and also our devotion, also we bow to the feet of our Guru as we ask of you, Bhagwan. O Bhagwan, may our Guruji, His blessings, continue to guide us, protect us, and bless us now and always. Hare.

बोलिए प्रेम से श्री आदि शक्ति देवी माता की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सनातन धर्म की जय। भैया वी आर ब्लेस्ड टू बी एबल टू असेंबल अगेन लाइक ए फैमिली ऑन दिस स्पेशल नाइट। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव बहुत बड़ा भैया है धर्माचार्य जी और धर्माचार्य and also his elder brother, and welcome to the Pandit's family, welcome to all of you for being here. We'll do aarti, and then first, before I commence, I would request him to say a few words before I commence katha.